0: मत मिली और मैंने यह सोचा कि अगर इस इल्म के लिए इतना वक्त लगा सकता हूं तो अल्लाह ताला के दीन के लिए यह वक्त भी नहीं लगा सकता। फिर मैंने यह फैसला किया कि इस इल्म को हासिल करना है। इब्तदाई दौर में कोई खास उस्ताद नहीं था, किताबों से मैंने इल्म हासिल करना शुरू किया। घर के करीब पाकिस्तान में मस्जिद है, अहले हदीस मस्जिद, वहां से अल्लाह ताला को जज़ा खैर दे मैं अहले हदीस हुआ और जो किताब मुझे चाहिए थी वो मुझे उसी वक्त फराहम कर देते। मकतबा उनके था, तकरीबन सब किताबें मौजूद थी। लेकिन इब्तदाई दौर में सिर्फ मैं जिन मसाइल पर जगड़ता था, जैसे आम मसाइल रफ़ दैन का मसला है या अमीन बिल जहर का मसला है या सूरह फातिहा इमाम के पीछे, ये मसाइल थे। अकीदे के मसाइल में बहुत कम बात मैंने सुनी है, हक बात है। जब मैं यहां सऊदी अरब में आया अर्से तकरीबन 12 साल पहले, 10-12 साल पहले, तो यहां पर मैंने मनहज देखा, अकीदे का मनहज और जो हक मनहज है। और मैंने इल्म हासिल करना शुरू किया अल्लाह ताला के घरों में। मैं किसी खास मदरसे में नहीं पढ़ूंगा, किसी कॉलेज से मैं मैंने कोई इल्म हासिल किया है। मसाजिद में अल्लाह ताला के घरों में मैंने इल्म हासिल किया है, तफसीर का इल्म, अकीदे का इल्म, हदीस का इल्म, फिकह का इल्म और अरबी ग्रामर का इल्म, जितनी भी उलूम का ताल्लुक है शरीयत से। और जिन उस्तादों से मैंने इल्म हासिल किया है, अभी भी कर रहा हूं मैं, शेख इब्राहिम अल मुहमीद हफिज़हुल्लाह, ये मेरे उस्ताद हैं, वह शेख बिन बाज और शेख बिन उसैमीन के शागिर्द हैं। और अभी तक भी मेरे शेख भी अभी तक इल्म हासिल कर रहे हैं मदीना में, शेख अब्दुल मुहसिन हम्माद अल बद्र से हफिज़हुल्लाह, जो आज के दौर के मुहद्दिस हैं। और उनके साथ शेख अबैद अल जाबरी से भी मैंने इल्म हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह, और दीगर भी काफी उलमा हैं, जिनमें शेख साहिल फौजान हैं, शेख अब्दुल अज़ीज़ राजही हैं, शेख बिन जबरीन हैं। बाज़ फ़िक़्ह मसाइल में भी अल्हम्दुलिल्लाह इनसे मैंने इस्तिफादा हासिल किया है। लेकिन बराह रास्त जिनसे मैंने ज्यादा इल्म हासिल किया वो शेख इब्राहिम महमीद हैं और शेख अबैद अल जाबरी हैं। और शुरू से मैंने जैसे बयान किया सलफी मनहज पर नहीं था मेरा मनहज, जैसे बताया बरेलवी था मैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे अल्लाह ताला ने हिदायत दी है तो अल्लाह ताला मुझे मनहज की भी आसानी फरमाई है। मनहज भी अल्हम्दुलिल्लाह, यानी एक चीज मैंने देखी है आपको मैं बता दूं, मैंने सिर्फ मेहनत की है, कोशिश की है और अल्लाह ताला की तरफ से सब आसानी आई है। और जो मैंने किया आप उसे अच्छा कर सकते हैं, मैं जानता हूं। और अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि किस तरीके से आसानियां हुई मैं बयान नहीं कर सकता, और किन किन लोगों से अल्लाह ताला मुझे जोड़ा है ये मैं सोच भी नहीं सकता था। अल्हम्दुलिल्लाह, तो इतना ही ले सिर्फ काफी। कौन जवाब देगा? मां और बच्चा दोनों कमजोर है, दोनों सेहतमंद रोजा रखे क्या मुश्किल है? दोनों सेहतमंद है तो क्या मुश्किल है? रोजा रखे फर्ज है, तंदुरुस्त है वो। अगर दोनों कमजोर हो, चौथी सूरत ही है, क्या करेगी? रोजा नहीं रखेगी, तो बाद में कजा करेगी, कफारा देगी? कफारा नहीं है, नहीं कफारा नहीं है। कफारे का कायदा याद रखें हमल की और दूध पिलाने की सूरत में, अगर वजह औरत में खुद है तो कफारा नहीं है, अगर वजह किसी और में बच्चे में तो फिर कफारा है कजा के साथ। जी कजा नहीं कर सकते, कौन नहीं कर सकता कजा? नहीं कजा पूरा, आपके पास पूरा साल है कजा के लिए, पूरा साल है तो कजा वाजिब है, फर्ज है। और अगर आजिज हो जाए कोई शख्स, जैसे बूढ़े शख्स से मैंने बात की थी, कजा नहीं कर सकता, तब मिसकीन को खाना खिलाए। मैंने नहीं सुन रहा, फिर बेच के मुश्किल है।
1: जो
0: سيدنا عبد الله بن عباس.